भूल हल्की हल्की, भूल हल्की हल्की, भूल सी हल्की हल्की, भूल हल्की, भूल हल्की हल्की, भूल हल्की हल्की, भूल सी हल्की हल्की, भूल हल्की।

0: चांदनी से डोर के घूंघट ही बना लो रोशनी से डोर के शर्मा गई जो आगोश में लो ओ सांसों से अलझी रहे मेरी सांसी फूल हल्की हल्के फूल हल्की हल्के होठ से हल्की हल्के फूल हल्की बालो बालो बाबू बालो
1: यो वेरी